समझा चुकी के आग हूँ मैं, न खेल मुझसे मोहब्बत के हक में नाग हूँ मैं।

देखो जी देखो, एक बार इस तरफ देखो, ये दिल बना है शीशे का, पत्थर पे इसको मत फेंको।

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरा लाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल के आयु में जीफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मरी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सिदोरे जो वैख देसा लीली दौरप का रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में जीफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल के मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप देसा सीधो रेजो वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वुंसदाख आफंत फन जी फन तौत अख्तूर ओला जोयत के मुर्दालय फ्रेतरूस के स्रात 91 आम्स्टर्डम जोयत में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 4 बजे दोंदर दखांस्तांद फिर यूर किए जाएंगे। वैसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैग 275 आम्स्टर्डम उस दौरप में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 28 41 91 71 06 28 41 91 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

था। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से लड़कन निधान सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल के आयु में द्रियन नेहन तखियार और लड़कन जॉनी शॉर्सिन हेलविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता सभी दामाद और पतों के ससुर लड़कन के नाना आजा और परनाना और स्वर्गीय श्री इवरेन पोप की निधान सिंह झिनगूर का पति दिमनजोइत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अम्स्टर्डम से सभी लड़कन निधान सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल के आयु में द्रियन नेहन तखियार औत लड़कन जॉनी शॉर्सिन हेलविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता सभी दामाद और पतों के ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना और स्वर्गीय श्री इरेन पोप की निधान सिंह झिनगूर का पति दिमनजोइत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज इतवार के दिन में 2 से 3 तक फमिदक फन त्वी तो द्री उर उत्फार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 1 वोंसदखांस्तांद 1 किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार निधान सिंह के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Yeah, Ujala Radio. Goedemiddag allemaal. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Ujala Radio. Ik zoek Jaan, af en toe ik een beetje krijg. Aanskees, eetwaardige programma. Dit is Ujala Radio. Harry Kamukaskele. Check onze website ujala.nl. E-mail aanwezig te heen naar info@ujala.nl. Naar Ujala. Toe Jaan is toch. DAB Plus पर हॉलैंड भर में कोना कोना में तू चाहे जहां जाइए उजाला को साथ मिले जाइए और उजाला को सुनिए अच्छे से अच्छे गाने अच्छे से अच्छे बातें कम बातें कम बातें और गाना ज्यादा और उजाला रेडियो तू जाने तो
4: She said I am the one who dance on the floor in the round
3: उजाला रेडियो के जरिए हम एक घंटे के लिए आए हैं एंड जो मतेन गा एक वत नंबर्स आफड्राएं फन सिंगर्स डी अनवेजिग सो जाइन ऑफ ब्राजाफेस्ट मा दन जो मतेन जरुसुलिना तू जाने है तो नोग 5 दागे टू गान हाल यू टिकट्स फॉर फेज 2 अर्ली बर्ड टिकट्स सुपर अर्ली बर्ड टिकट्स क्लियर नोग 5 दागे हास्य तू जल्दी कर Ja, draai daar in akker. En nu, Rosika, dien die al gewaagd, we hebben afgesloten aan de kujaren.

0: एन इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया को छोड़कर हम आपको सुनाने को जा रहे हैं वही नहमा जो इन दिनों में काफी हलचल मचा दिया है गैसन वाला। इलेक्ट्रिक पिया को छोड़कर हम चलते हैं हमार मशीनिया की तरफ। अब जरा सोचिए कि कौन है, के है तोर मशीनिया, के है तोर मशीनिया।
1: अरे हमार मशीनिया
0: देवेंद्र सिंह शिवना।

एजरा शिवम राजा राम के आवाज में आपने सुने हैं, पेश किया गया है सुनवालो उजाला रेडियो के जरिए हम आपको सुनाते हैं थोड़ा सा ये नगमा, और भी खासकर अनुपा भगवान दीन के आवाज में। अनुपा भगवान दीन मैट डायमंड्स 2000 ओक अवेसन और ब्रासा, और वो भी आप सुनने गुजर हैं अनुपा के आवाज में। एंड डाउन हो रहा है अनुपा।

टूजल उमरों को छोड़कर हम आपको ले चलते हैं निजाम वागिद हुसैन की तरफ और निजाम वागिद हुसैन आपको सुनाने वाले हैं पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो के जरिए निजाम वागिद हुसैन

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे आज इतवार 16 तारीख अगस्त का प्रोग्राम सोंदाग 16 और खुश खुद मेरा खलमाओ। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। बस इन दिस का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा यहाँ से आप लोग सुनने को जा रहे हैं हर एक इतवार की शाम की तरह। दो घंटे लगातार आप लोग सुनेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। मैं हूं सुभाष शिव गोविंद और जहां तक आप लोग हमें सुनते होंगे बस सुनते ही जाइए दिन में 5 बजे तक। या वो 5 बजे तक आप लोग किसान अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का वैसे आपका फोन का नंबर है 020-363-0808 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके। हमारे प्यारे सुनो लो, चलिए पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे स्वर्गीय पंडित राम प्रसाद राम खेलावन जी की आवाज में आप सुनेंगे।

शाबाश शाबाश जो इस तरह से स्वर्गीय पंडित राम प्रसाद राम खेलावन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार चलिए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले साहेब हनीफ रोजन, और ये गाना पेश है आम सलाम सहितोष में रॉबी रोजन के लिए।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खास करके द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी के आवाज में। और नतुलक सनेसाइल बोले अबेलक कपड़वा स्पार कर है या वेल आई बो स्पार कर जी अच्छा। और degene die aan het koken zijn, kook ze allemaal en voor straatjes eet u smakelijk. En Almere met jahapar Sunita en Ruben programma kusune. Twee gaan op donker naam.

वाले शाबाश शाबाश बोले सपनों में प्यारी सूरतिया दिखा दो आयुषरा से स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के वंश में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने वह सुरीनाम से आए है भैया विनोद दुबे और खासर के धीरज सीताराम के लगे हैं तो दोनों बैठ करके सुने हैं तो भैया विनोद दुबे यह गाना तुम्हारे नाम है भैया धीरज सीताराम के लिए

शाबाश पल पल बीत जाती उमरिया, प्यारा प्यारा बचपन का आयुषरों से श्रीमान सत्यानंद रेखा जी के आवास में अभी आप लोग सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। और देखा जाए उस दौर में हैंक गोपी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम।

शबाश शबाश मोरी अतरिया है सुनी एंड बलम नहीं आए। और इस तरह से हनीफ रोजन जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, सुरेश और लीला हीरा एकदम बारह दरख्त में प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना आप दोनों का नाम सुरेश एंड लीला हीरा के लिए बारह दरख्त।

शाबाश शाबाश चले पवन के चाल। इस तरह से स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और चलिए अब की बात तो देखा जाए होप दौरा शहर में आनंद मंगरू प्रोग्राम को भी बैठ करके सुने हैं।

जगत में आईसरा से हारी सिद्धू की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन 10 मिनट बाकी रहा, 4 बजने में 3 मिनट फॉर फिर एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके आलमेरे शहर में जहां पर इस वक्त भाई प्रकाश चंद्रिका सिंह जी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे ना भाई जी।

शाबाश शाबाश से स्वर्गीय श्री पंडित अवत बिहारी जगरू की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, आप को शुभ दिन और

और आज आमेर शहर में जहां पर इस वक्त संत चंद्रिका सिंह का जन्मदिन है और फनहर्त फनहर्त और ये जन्मदिन आपको बेशक बधाइयां शुभकामना परिवार

0: खुशी।
1: और जो गाना सांता के लिए हम घुमाना चाहते हैं और गाना इस तरह से होना चाहिए। और चलिए द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। और जिस तरह से हमने बता चुके कि आज सांता चंद्रका सिंह का जन्मदिन है, फनहर्थ बधाइयां शुभकामना इस गाना के साथ।
2: हजारों साल जियो हजारों साल।
1: और गणवा ए बोई बोई बोई बोई जो गाना हम मांगिल बजावे नत्युलक अब देश से है नत्युलक ये गाना होना चाहिए यार। और इस तरह से गाना जो आप लोग सुनेंगे और खास करके गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुनेंगे। हमारे तरफ से भी बधाइया शुभकामना। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं और इस तरह से होना चाहिए द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी।

बिल्कुल ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिल्कुल ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, वैसे प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। करीबन 11 मिनट वैसे सच करे 4:11 फिर दूसरा भाग और आखिरी भाग बैठक गाना वैसे का प्रोग्राम। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो राकेश यानकरन की आवाज में, और ये गाना पेश है आलमेर शहर के रहने वाली निर्मला चंद्रिका सिंह के लिए।

Wel, wel jaar, oh gori, mare, karre, jua, hamar, ouseren se, rakis, ha, rakis, jan, karin, kevas, megana, je programma, bij aap, luxune. चलिए अब की बार तो होफ दौरब शहर में जहां पर इस वक्त आनंद मंगरू प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं एंड प्रेमनंद ने लाइक

शाबाश शाबाश, ये वादा करो चांद के सामने कि मुझे भुला ना दूंगी। अवसर से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अमसलम सही तो उसमें राय खरबोश में इस वक्त भाई रॉबी रोजन अपने दोस्तों के साथ बैठ करके प्रोग्राम को सुने हैं। तो चलिए गाना आपके लिए और सभी दोस्तों के लिए।

0: शाबाश शाबाश बाला जमानुआ छोड़ो हमारे नगड़ी अविश्रा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम
1: बाती हिरनिया धीरे धीरे चलो
0: और देखा जाए हार्लेम शहर में जहां पर सीता भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं सीता और राम के लिए गाना

अरे शाबाश शाबाश यार, धीरे रे चलो मोरे बाग के रनिया। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और देखा जाए आमसरम तो उसमें भी बैनी रामसरन प्रोग्राम को बैठ कर सुने भैया बैनी। और चलिए तो गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे एक बार फिर द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज में। वेल हमार मसिनिया

शाबाश शाबाश और इस तरह से स्वर के रामदेव चैत्री जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने यही रोहतरनाम में विकास हरी एंड बेटा प्रोग्राम को सुने हैं अपन काम पे काम कर रहे एंड यू आर उजाला।

शाबाश शाबाश मेरी पतली कमल मेरी लंबी बाल और इशारा से बिजनवती चैतू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने वैसे इसका प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा यू आर उजाला रेडियो एन अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो राशि का दिन दयाल के आवाज में और ये गाना पेश है श्रीमान अर्जुन बिहारी

0: पहले बदला बदला है ना हेम हेम लता दीन दयाल जी के वास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए तो भैया हैं गोपी भाई बैठ करके सुने तो भैया हैं गोपी। चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो तुम्हारे लिए गाना पेश है और इस तरह से आप लोग सुनेंगे एंड यू आर उजाला रेडियो का पौने पांच का वक्त है क्वाट 4:05
1: जो अपना
0: चलन दे यार
1: जो आप

Ramadan Shabbat. जो इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और फैंस अपन दरवा भी

और युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे थे फैंस बोल रहे में मिला भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। तो उजाला रेडियो का प्रोग्राम ये दूसरा भाग जो बैठे गाना का प्रोग्राम करीबन 10 मिनट बाकी रहा 5 बजे में थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ विथ इंडिस का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। तो चलिए फैंस बोल रहे में मिला प्रोग्राम को बैठ कर सुने। या बोल आई बोल

और हमारे प्यारे सुनने वालों, चलिए प्रोग्राम में एक आखिरी बैठक गाना जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और देखा जाए तो खास करके दीमन जर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो चलिए फौसिया ये गाना तुम्हारे लिए। आई बॉय यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, मैसेज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं।

वेल वेल यार बहे अखियों की दार, बोले तू कहां जाइए छोड़ के, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड आखिरी गाना हिसला यांग की दरहाख में भी बैठ करके प्रोग्राम को सुने। और चलिए गाना पेश है हमारे सभी सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ दिए अब तक, या वेल आई बोल चलन दे

आप सभी सुनने वालों को आशा है कि आज का प्रोग्राम भी जिस तरह से हमने बनाया है वैसे इसका प्रोग्राम बैठक गाना आप लोग को पसंद आए होंगे। आने वाले सप्ताह इतवार को फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग मौज से रहिए, अपना इतवार का शाम इतवार का रात्रि मौज से बिताइए। जो भी आप लोग करेंगे प्यार से दुलार से कर लेना, नहीं तो ना करिए। आप लोग मौज से रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिव गोविंद। मौज से रहियो।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

ये उजाला रेडियो है। इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला पॉइंट एनएल।

फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। इस गीत को गाये गए है, बनाये गए है, लिखे गए है सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों के नाम के साथ। मोई खदान तो एक दूजे के लिए फिल्म का नाम, और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अब पंकज उदास एंड साधना सरगम, फिल्म मोहरा का गीत।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरा लाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल के आयु में जीफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मरी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सिदोरे जो वैख देसा लीली दौरप का रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में जीफन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप देसा सीधो रेजोवेख का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वुंसदाख आफंत फन जी फन तोत अख्तूर ओला जोयत के मुर्दालय फ्रेतरूस के स्रात 91 आम्स्टर्डम जोयत में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 4 बजे दोंदर दखांस्तांद फिर यूर किए जाएंगे वैस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैग 275 आम्स्टर्डम उस दौरप में निवासस्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 28 41 91 71 06 28 41 91 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

The rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio KPHM. Aap sun rahe hai. Phone ka naman administratie par hai 020-409-0807. Radio ke chhetra par har ek kamar kaaj ke waaste aap dial kar sakte hai show mar se lekar shaniwar tak subah mein 10 baje se lekar din mein 3 baje tak 020-409-0807 par. यूआर के सभी सुनने वालों के खिदमत में आपका खादिम शहीद गुलजार का नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आप हमें यहां से भी सुन रहे हैं, जिस हालात में आप भी हैं, बीमार दुखित या तो लाचार हैं, आपकी खुशी के वास्ते भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है। लिए पेश खिदमत है लगातार नॉन स्टॉप म्यूजिक मिक्स मक्स सॉन्ग्स और इस बार डिस्को किंग बप्पी लहरी।

क्यों आके श्रोताओं के मध्य में प्रस्तुत किए गए है खैर मकदम के साथ सबसे पहला सिलेक्शन। देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, डिस्को किंग बप्पी लहरी की आवाज आपने भी सुने हैं, और मिले जुले संगीत में हम आपको इस बार सुनाने वाले हैं सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब, और साथ दे रही है दीवाने नौली द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। फिल्म का नाम रातों का राजा और गीत का बोल मोहब्बत से तुम्हें देखा मगर तुम न जाने क्या समझे।

मोहब्बत से तुम्हें देखा, मोहब्बत से तुम्हें देखा, मगर तुम न जाने क्या समझे। हम आपको फिल्मी नगमे सुना रहे हैं, लेकिन अब सोच रहा हूँ शायद कुछ लोग हैं जो नाचना चाहेंगे, तो आप सभी के वास्ते जो लोग नाचना चाहेंगे आपके वास्ते एक लोकल सिलेक्शन हम सुनाने वाले हैं। इस बार है इंडियन टेम्पटेशंस के साथ पर और पुराना गायक विम डमरी की आवाज के साथ, अगर तेरा है तो वाका वाका। एंजॉय दिस सॉन्ग बाय यू आर। हर एक को एक बहुत ही शुभ दिन, मुबारक दिनर्स है यू आर की पूरी टीम की ओर से। इस सिलेक्शन के साथ आप हमारे साथ भी नाचिना, साथ अगर तेरा है।

वन ऑफ द फैबुलस सिंगर्स विम डमरी को आपने भी सुने हैं कि साथ अगर तेरा है तो वाका वाका इंडियन टेम्पटेशंस के साथ पर उजाला रेडियो के जरिए। द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो में फोन का नंबर 020-363-0808 0808-363-0808। एडमिनिस्ट्रेशन पर नंबर है 020-409-0807 0004-0808-07 पर आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते या तो वेबसाइट ujala.nl। इस बार प्रोग्राम में आप सुनिए एक बहुत ही मजेदार सिलेक्शन, लंबा हो

You are Ujala Radio KPHM here, phone number here, administratie per 024-09-0807. Radio Kachetra per Hari Kamer Kansh ka waaste aap show, Marcele Kashani waar tak subha mein 10 baje se lekar din mein 3 baje tak dial kar sakte hai, Amsterdam shahre mein 024-09-0807 par. मिले जुले संगीत कुछ मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं. आपका खादिम का नाम है शहीद गुलजार, स्टेशन है उजाला रेडियो और इस बार गायक है द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी. हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, तू माने चाहे तू ना माने.

तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, तू चाहे माने चाहे ना माने। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी की आवाज आपने भी सुने हैं। मिले जुले संगीत आपके खिदमत में कुछ मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स पेश किए जा रहे हैं और इस बार प्रोग्राम में है शैलेंद्र सिंह की आवाज आप सुनेंगे और गीत का बोल गूंजे लगे है कहने।

शरेंद्र सिंह जी की आवाज में आपने भी सुने हैं कि गूंजे लगे है कहने सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल ओ मेरी जिंदगी, कहीं तन्हा ना बीत जाए ये दिन बहार का। कुछ इस तरह सा सिलेक्शन आपने अभी प्रोग्राम में सुने हैं शरेंद्र सिंह जी की आवाज में। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो।

अब रात हो गई है जवान, कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं आज इस दिन का पैगाम में। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप सभी खुश रहे और सलामत रहे, और प्रोग्राम को बेशक सुनते रहना और सुनते ही जाना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू देना साथ मेरा, वो मेरे हम नवाज़,

Ujala. हो जाए प्रोग्राम में एक बैठ गाना सिलेक्शन मोहे लागी रे लागी रे लागी जुल्मी उमरिया समरिया।

कसम। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज आपने भी सुने हैं कि कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, तौबा सनम तौबा सनम। हम आपको इस बार प्रोग्राम में फिर से द नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी को सुनाने वाले हैं और इस बार है इनके पिताजी यानी अमित कुमार के पिताजी, द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार। तेरे मेरे मिलन की ये रहना

0: उजाला रेडियो है सुनने वालों, और आरंभ किया जा रहा है साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। आपके लिए बना रहा हूं बहुत प्यार के साथ। और इस प्रोग्राम में गीतों और गजलें जो हम सेलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं, तो हम बातें कम करते हैं इसलिए ताकि प्रोग्राम को आप बहुत ही इत्मीनान से सुन सके। और चलिए पेश है तलत अजीज की आवाज में पहली गजल आज।
1: फिल्म का नाम अदालत, वक्त सन जो है 1958, मुझे पैदा होकर 3 साल हुए हैं। और ये गजल राजेंद्र कृष्ण साहब की है, लता जी की आवाज। मिकी यहां पर हो तुम,

उस मोर से शुरू करे फिर ये जिंदगी, हर शय जहां हसीन थे हम तुम थे अजनबी। जगजीत और चित्रा सिंह से आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया उजाला।

शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। पंकज उदास जी की आवाज में सुंदर गजल को आप अभी सुने।

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जगजीत और चित्रा सिंह से आप सुनिए।

तुमको अपनी ख्यालों में क्या नहीं कहता, खुदा के डर से तुम्हें बस खुदा नहीं कहता। अशोक खोसला की आवाज में आप सुने।

पर्दा किया, ऐ कफन तूने तो शर्मिंदा किया। पंकज उधास की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर गीत और गजल की दुनिया, जो आपके साथ और हजारों लोग भी सुनते हैं इस वक्त। हाँ,

तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। मेहदी हसन की आवाज में आप सुनिए, गुलाम अली साहब हिस्सा ले रहा है।

ने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही। गुलाम अली साहब की आवाज़ में गज़ल को आप सुने। और प्रोग्राम का इस हिस्सा में एक आखिरी गज़ल आप सुनेंगे, लेकिन उदास मत होना। इसके बाद हम प्रोग्राम का दूसरा भाग लेकर के और हाजिर हो जाएंगे।

ये उजाला रेडियो है और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजले के साथ। और सुनने वालों, आज का प्रोग्राम में सबसे पहला फनकार होंगे पंकज उदास जी, उनकी आवाज में सुनिए।

आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े ही खुश नसीब होते हैं। आप गजल को सुने पंकज उदास जी की आवाज़ में।

तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है। प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया। ये वही प्रोग्राम है जिसमें हम बातें कम करते हैं ताकि आप इत्मीनान से प्रोग्राम को सुने और लुफ्त उठा सके।

इस सोच में बैठा हूँ क्या गम उसे पहुंचा है। चंदन दास जी की आवाज में आप सुनें।

मिलने शम्मा जलाकर ताज महल में आ जाना, जब आंचल रात का लहराए तो। और आप सुने नीना और राजेंद्र मेहता से, उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

मोहब्बत क्या समझा, तुम दिल का तड़पना क्या जाने। तलत अजीज की आवाज़ में गज़ल को आप सुने, एल्बम आशियां से या तो आशिकाना से, हाँ आशिकाना से निकाला हुआ प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया आपके साथ, और हज़ारों लोग सुन रहे हैं। और हम तो ये हमेशा कहते हैं कि हजारों लोग सुने या ना सुने, आप जो सुन रहे हो

का आने को है। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने और अब हिस्सा लेंगे पंकज उदास के साथ अनुराधा पौडवाल जी।

ये फूल कलियां बहार खुशबू तेरे ही जलवों में ढल गई हूँ। अनुराधा पौडवाल के साथ पंकज उधास से गीत आप सुने उजाला रेडियो पर, और प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया। अब हिस्सा लेंगे मासूद राणा जी।

लगे। हम सफर आज की ये रात नहीं भूलेंगे। गीत आप जो सुने देखा जाए, हाँ, मसूद राणा जी की आवाज़ में उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया। और आप जो सुन रहे हैं ये हमारी खुश नसीबी है।